श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आपा में बड़ी पार कृपा रहे हमें बख्शिश की सतगुरु आपने तरस किया सतगुरु जी अपने बच्चों पर आसा दीवार संपूर्ण कीर्तन करवाए सतगुरु जी कीर्तन करते हैं बेनती करते हैं परमा सतगुरु बख्शने सतगुरु संतों वालों शब्द भेट जो माया हाजिर करते हैं पातशाह जी आप नाम जानी जान सतगुरु सभना दियाँ मनोकामना भावना सतगुरु जी सेवा लिखित लाना नाम बाणी की दाद बख्शिश नवाजना सतगुरु जी कारो बाजे वादे बख्शने हर दुमदान फतेह कनी यात्रा।

दरबार में तेरे दरबार आ सचखंड वचन रंकारा लक्ष्मी प्रति तेरे दरबार आ सब देवते प्रतिमकारा बनूरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण अवतार जग मग जोत विराज रे श्री अपने ग्रंथ।

आगे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राहु है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चूर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को प्रणाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेख है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है परमाथ है न सीत है न सोच है न क्रांति।

न द्वैक है, न पीक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिन्ह वर्ण है, बेअंत है, अनंत तीज जानिए, अपूम अपिज है, सदा छिज तेज मानिया, न आद है, न ब्याद है, अगाध रूप लेखिया, अदोख है, अदाग है, अच्छा प्रताप पेखिया, न कर्म है, न परम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अपंग है, अनंग है, अगंज

है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न पाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत शिव है सदा, सितुष्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त याद जीवटि तपस्पति विशेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया। अगाध याद देव की अनाद पात मानिया, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहा, तुरंत द्रोह देख के अनंत।

दुष्ट गंजन सत्र पंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मैं जयगाथ भूत भब भविख भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत अनाद श्रीपत परम पुरख अपंज धर्म के अनकर्म जीतक कीन तौन पसार देव अदेव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार भूमकाश जले थले मैं मानिया जहना दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक सत्र कालक दीन दयाल मुकंद अगौ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरणंग पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्वभरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूमिका जले थले मह जप जाप अमंड सृष्ट चार विचार जीते जानिया सविचार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञान

आदर के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के सार है। दान के दवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के बिटैया महाबुद्ध के।

हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताए चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते ब्यासे प्रवीन किते कुमिर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताई ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानिया अद्वै विनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कै मानिया। जंत्र हुना जात जा की पाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा के अनमानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र कह के जानिया। तेज हूं को तारा है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है। कामना की कान है के साधना की शान है वृक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं के रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को पचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को पर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को कारण है के तेज को प्रकाशी है। पाई है न पार पार अवार हूं को पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी त्यावे पूर्वी न पार पावे आसा ते अनास है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अपेवनाथ अद्वै अविनाश है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के पुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है तरैया द्रुम छाल के। कामले कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावद छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब कालिंद्री के कूल के। हंसनी सी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली साधु सिंध रूल की। पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल की। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग तहार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाईयत है। पखरी कंधारी गोर गखरी गर्देजाचारी पवन के आहारी तेरो नाम।

जाह करे ना हुई। बलहारी कुदत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूरया। तू सच्चा साहिब बस वाले हो जिनकी तीसो फार पया।

चत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सहल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखी काष्ट हरिया रहा।

का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी। सिव कण को सिव गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने। जा बुद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा। जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम। नरंकार निर्वकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत वेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत महामूड़ कश भेद ना जानत। महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का छीनत नह भिव। आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी उत्वज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता। जे इस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे। पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह ऐ हैं। रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हां। रिद सिद्ध धर्मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई। एक बार

आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दै हाथ उबारो, हमरे सब बैरिन संघारो, प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बहर करो कबता बिद नाना, किशन जथा मत

तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारै ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुरग बा सुरग वर कर सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम

निरंतर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन।

आँख तरि नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब।

बजे बजे शर जो होए उड़ गई सबाब लेश देकर पूरा पासा लंका बाजे भजे गान है कलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव स्वयं खरबदार सर्व जुगते तुकाल प्रणा सी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम प्रभुते देवते गोपते दरबार में तेरो दरबारा सच खंड निरंकार।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद पो विस्माद विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे।

भवचिंद्र फिरा सिर भार, भवच राजा धर्म दुवार, भव सूरज भव चंद, कह करोड़ी चलत न अंत, भव सिद्ध बुद्ध सुरनाथ।

अंडज जेर जित पुजा खान सित जा सुमित जाने नानका सदा मेरा जनता है। नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता भे करनी ता है। सुखता चिंता करे जिन पाया जागत तिस जुहारी स्वस्थ तिस।